0: 1970s.
1: In the morning, it's a job back in the door.
2: Ah, come in here. Hey, come in the door. You click in the door, hey? What do you have? Hey, how's it?
1: Mark, it's a big natural. Oh, yeah, I mean, that's what we're talking about, sir. Would you have a bag of a zoop now? Oh, sir, my boots are ready. You look on me? Don't you have a second to the other me?
2: Oh, no, eh? One more Sunday. साधुपुत्र का एक बार तो था जब बैंड गाड़ी में लगा बंबू लगा मैं सुतो आदि बच्चे तो तो क्या नहीं होता नागेल में अपने सुते बैंड बसन पर सारा पानीला मिसके बंद कर दियो
1: अरे साधुपुत्र का एक बार तो दिन ना अगर वो एक रिश्ता कर रहा है कि रास्ता कदाला चिप बनाता सोचे तुम्हीं बारे में मिसके बंद हुआ है
2: ना मिस्टर जा घर में इतने कुकर तुम्हें ये तार का भैया नोटिस डाला मैं मिस्टर सॉर्ट पर उन सबके पास बोले तो तेरे को नहीं मालूम क्या कुछ हो
1: ओ सार तेरे अपने पास सब कुछ तो क्या मेरे पास ना सब इधर सार ना खास तो भाई जी जान ना खास तो
0: सब पर करा अपना भी करो रेडियो प्रभाव स्टेशन द्वारा जनी प्रजारी संदेश

0: के कोई देखा नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई पकड़ के ले गए अवस्था कर रहे नहीं। और
1: अनुभव पूरा अवस्था
2: परिस्थिति मैं अपन
1: में
2: मरना हुआ

महाभिकरण ने वेदन आलोचित द्वारा समहाभिकरण संबंधी समूह को निर्णय तक के लिए समूहदी समूह को छाप आरक्षे को फोटो आरक्षे परिवर्तन भएको हकमा नयाँ समूह दर्ताको हकमा अनुसूचित को मजदूर समूहाधिकरण निवेदन अनुसूचित सात को मजदूर वितरण पूर्ण रूप में अनुमोदित विधान के प्रति समूह को प्रत्येक सदस्य

फिलिपिन भाषी कार्यक्रम फोटो नगर पालिका नगर कार्यपालिका को कार्यालय बढ़ दिया।

कि 10 साल में 1082 की राशि वाला इस बार सभी नगर पालिका का पूरा प्रयाणा गठन हुई कृषि विकास शाखा मदद किया समारोह नया गठन हुई दर्ता नौकरी का दर्ता हुआ नई शिक्षक समारोह दर्ता कराई मौजूद का आवश्यक कार्यक्रम सहित सूचना प्रसारण को भी देखी और इस दिन 1783 गति तक इस पालिका को कृषि विकास शाखा निवेदन जी राज्य सरकार अधिकरण के अनुसार सबको को जानकारी बनाएगी योजना प्रसारण करने के साथ साथ ही अनुसूचित फार्म विधान नमूना और निवेदन को रहेगी पासवती नगर पालिका कृषि विकास शाखा राज्य सरकार कृषि सेवा केंद्र में संपर्क के नमूना अनुरोध छा समारोह के तहत प्रभावना अनुसूचित मोदी समूह अधिकरण निवेदन अनुसूचित शाखा मोदी विवरण समूह अधिकरण संबंधी समूह को निर्णय प्रतिलिपि

यहाँ मुसलमान भाई के घर हो यहाँ बैठे सबसे हमार मजा मिलत अखबार हो है इतना गर्म नहीं लगे इसी बात की जय चीज लगे पहले सब वहाँ सब मेरे हो जाते भाग लेते होंगे वहां से आप मजा हो गया यहाँ आइए जब बैठे सबसे मजा मिला आप चिंता में रहता आप इस क्षेत्र का जय चीज करें Yeah.

0: हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रपत्र की बद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे की बद्धता घटी, व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सब सुलभ रूप में टिकले यहाँ पर गुरु स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरह से कौशल्य अस्पताल बासगढ़ में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती अस्पताल से दे देना सेवा चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजोर नशा मोटू चेक जाँच करा
1: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशु की सेवा घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मोटू एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध बा प्यारालाइसिसको मुख बाँधिन नसा ताप्दैन हात द्वारा

जुलुस तर अवश्य मेरी प्रदर्शन कर पूरा लोक रोक लगा निषेधाज्ञा लागू हुआ क्षेत्र कार्यक्रम रूप में चौकसी बस पार्क बाईपास सड़क पश्चिम तिरावलीपुर उत्तर में गंडक चौक को दक्षिण में सखता गेट संपर्क भारत प्रकटा प्रशासन का सूचना अनुसार आदेश का उल्लंघन करना और क्षेत्र मंत्री तत्काल पकड़ाऊ कानून बमोजिम।

0: राष्ट्रिय समाचार संग्रह हमार संदेश का समय बढ़ाई लगल हमार संदेश रैना से पहला मुख्य मुख्य संदेश बांसुरी नगर अस्पताल में नाकान तथा ख्याचा रोग विशेषज्ञ परामर्श तथा उपचार क्लिनिक में 26 जना प्रेमन सेवा गोपीरगंज का शांति सुरक्षा में ध्यान में रहकर जिला प्रशासन कार्य पर्सा महानगर पालिका का प्राकृत क्षेत्र मरीज तथा जांच जारी रहता
1: जय गुरुदाबाद।

शुरू करने पर असर कमी अर्थात रक्त अल्पताजे पड़वा रक्त अल्पता शिशु के पेट का अवलोकन सकल अनुभव सीखा बिना पढ़ाई को ध्यान देना समस्या लग रही।

0: सारे नागरिक अपने अस्पताल को बने तत्व प्रभाव करें हस्तक्षेप से पर्न सरकार को ध्यान आकर्षण कराया हो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का संयोजक पुस्तक दाहाल प्रचंड ने घटना को संक्षिप्त मार्फत सामाजिक सत्ता तय पर्न सरकार ने अवश्य पहल जाना आग्रह कर
1: एकता को माध्यम देश भित्र घुसपेट कर खोजने और परिस्थिति अज असहज बना खोजने प्रवृत्ति विचार और शक्ति परास्त करना एकजुट होना अपील करना चाहन्छु।
0: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले घटना को निष्पक्ष और विश्वसनीय छानबीन गर्न सदन को ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रमुख सचेतक बसु थापाले घटना को निष्पक्ष छानबीन हुन्छ भन्ने नागरिकमा सरकारले भरोसा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

0: Eso es una verdad que no es así, de absoluto sentido de la doble de atención.
1: Eso es lo que está mirando a nadie que está mal, que tiene su cuenta de la actitud, una razón y que luego alcanza con más santa mano.
0: Es una alianza con la doble de atención. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, और सही पानी बनाना भी है ना इसके लिए सही ना और सबसे अच्छा सुनो आप लोग अपना भी है और वाइस प्रोसेस का है जो आप लोग हमारे साथ जो सुना हमने तो पानी जो और इस तरह हम सब की मदद से हम लोग अपना देखने को सबसे अच्छा करते हैं तो तो कल पक्ष है तो मेरे सारे भी समय में नहीं है तो हम उसे तो सबसे समाज को दायित्व सौंपा गया और समाज

0: ஆமா அப்படின்னா அப்புறம் சத்தமா குப்பாக்குறோம் சமாதான
1: स्वास्थ्य सेवा प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में टिकले यहाँ कल को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पदक ऐसी कम सभी अस्पताल पास करी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
0: अस्पताल ऐसी दे देना सेवा
1: चौबीस घंटा डॉक्टर के पद ऐसी निगरानी में उपचार करा जाए
0: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे ऐसी संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर ऐसी प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच कैलेगा
1: प्रत्येक दिन नशा तथा जीवन सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाई शिशुको मुखमा होइना नशा दाग भइला हात गोडा अनि चल्ना बिरामी उपकरणका फिजियोथेरापी तथा एकुप्रेसर थेरापी विधि बसे उपचार कैसिथा
1: नशा तपले बिरामी हुकरके बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुप्रेसर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
0: 24 घंटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था कैदिला असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुकरपूर्ण सेवामा 10% छुटके व्यवस्था कैदिला कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसगरी शाखा पाँच बाँसगरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण पाँच
1: सम्पर्क फोन नम्बर 084-400-192 और 084-400-2010 बाँसगरी बर्दिया संसदीय

आपके यहाँ एक जरा कुछ याद पर कुछ बनाए कुछ हो जोर्डन को सेनारे ईरान का पांच छह पैसा हरे को सारे कुछ बनाए कुछ हो यह सभी अमेरिकी सेनारे आफरे ईरान के मंगलवार जोर्डन स्थित अमेरिकी अखाड़ा में हमला को जवाब स्वरूप ईरान